नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। हम अपनी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने को है, अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस

0: आजकल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: वंदन वार।

भूल यदि हो जाए तो चिंता करने की बजाय उसमें सुधार कीजिए। जो कुछ बिगड़ गया हो तो घबराए नहीं, क्योंकि उसका भी उद्धार संभव है। विश्वास बनाए रखें। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार अब यहीं संपन्न होता है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। छह बजकर 35 मिनट पर यानी अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 187। छह बजकर 45 मिनट पर और शाम को पुनः 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला ऐसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का भाग दूसरा प्रसारित होगा। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे 7:30 पर हम ही राही प्यार की। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे प्रसारित की जाएगी त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा।

9:30 पर आज की फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मनहर उदास पर। पिटारा के अंतर्गत सुबह 10 बजे सुनिएगा सेल्यूलाइट के सितारे। अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे और 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत होगी, खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाते हैं, साड़ियों का संसार जिसके अंतर्गत बात होगी पश्मीना साड़ी की, शब्द हमारे विचार आपके इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी आत्मविश्वास की, और व्यंजन में भेलपुरी और दाबेली के बारे में बताया जाएगा। पिटारा जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज के मेहमान, शाम 4 बजे शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने।

6:35 पर शाम को आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा राग अनुराग। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 8 बजे कार्यक्रम चित्रलोक से पहले 8 बजे रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी ना बाबा ना, लेखन संजय श्रीवास्तव का, निर्देशक गोविंद पारिक। और 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक बैनी दयाल पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। रात 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात। और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस। इसका आप भाग 187 सुनेंगे।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है अनूप जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं कि जिनसे आपने तालीम ली और जो आपके लिए बहुत प्रिय हैं, आदरणीय हैं, वो हैं आपके पिताजी श्री

0: पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, तो आप उनके बारे में बताएं कि उनके जीवन का कौन सा अनमोल दर्शन आपको प्राप्त हुआ।
1: पिताजी बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक रहे, उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में गाया, बहुत लोगों को संगीत सिखाया जिसमें एक मैं भी हूँ, और वो बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। मुझे याद है कि बचपन में मुझे कमरे में बंद कर देते थे तानपुरा लेके, और कहते थे 3 घंटे बाद मैं कमरा खोलूंगा और बाहर से मैं सुन रहा हूँ और सिर्फ सा गाना, रे तक नहीं पहुँचना
0: जी।
1: तो 3 घंटे मैं सिर्फ सा गा रहा हूँ। दूसरे दिन फिर बंद कर देते थे कि आज तो रे गाना है, रे गा रहे हैं। तो इस तरह हुआ ये कि वो जो स्वर हैं उन्होंने गले में एक सिंहासन बना के अपने को स्थापित कर लिया, तो वो सुर जो है वो अपनी जगह बैठ गया। इस तरह से उन्होंने खुद भी रियाज किया था और मुझे भी रियाज करवाया। साथ ही साथ मुझे कहते थे कि कम से कम आधा घंटा रोज रियाज जो है वो आईने के सामने करो, कि तुमको ऐसा लगे कि कहीं तुम्हारा मुंह बन रहा है या हाथ पैर ज्यादा उठा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए, बहुत प्लेजेंट मुद्रा होनी चाहिए। तो उसका ही कारण है कि मुझे मुद्रा दोष का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं तो अक्सर गायन में मुद्रा दोष आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो उन्होंने सिखाई उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है, उनकी कृपा उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही हमेशा, और न जाने कितने उनके भजन हैं जो मैं गाता हूं और उनको और पॉपुलर करने की कोशिश करता हूं जो उन्होंने किए हैं। तो अधिकतर जो मेरा संगीत है वो मेरे पिताजी का ही है और मैं उसको पॉपुलर कर रहा हूं।
0: आपने कहा कि पहले दिन उन्होंने सा लगाने को कहा, दूसरे दिन रे, तो हमें बताइए कि 7 सुर कितने दिन में पूरे हुए थे और पहली बार उनके सामने आपने जब परफॉर्म किया तो क्या अनुभव था, कैसी यादें हैं?
1: नहीं, वो 7 सुर जब पूरे हो जाते थे फिर से 7 से शुरू करा देते थे।
0: अच्छा,
1: तो ये सिलसिला चलता रहता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हाँ अब सुर जो है इसके टिकने लगे हैं, ठीक होने लगा है, उसके बाद फिर कहते थे कि अब और भी कुछ गाओ साथ साथ, लेकिन शुरू में तो उन्होंने इसी तरह से तालीम दी
0: जी। अगर आपको याद हो तो बंदिश कौन सी सीखी थी पहली?
1: मुझे उन्होंने एक चतुरंग सिखाई थी जी।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि उनके गायन की शैली क्या थी और किन राग रागिनियों का वो ज्यादातर प्रयोग करते थे।
1: पिताजी तो बहुत विद्वान थे, तो बहुत से रागों को गाते थे। उनका राग विहाग में लट उलझी सुलझा जा बालम इतना अच्छा सुंदर गाते थे। एक दिन मुझे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी बता रहे थे कि उन्होंने मेरे पिताजी को लट उलझी गाते हुए सुना किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में।

0: और उस दिन से उन्होंने जसराज जी ने राग बिहाग गाना शुरू किया कि इतना सुंदर बिहाग कोई गा सकता है तो मैं भी गाऊंगा, उन्होंने भी गाना शुरू किया। तो पिताजी एक ऐसे गायक थे कि अपने गायन से लोगों को इंस्पायर कर देते थे और लोग गाने लगते थे। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत से रागों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो प्रचलित राग नहीं थे उनको भी प्रचलन में लाए।
1: और अब हम चाहते हैं कि पिता पुत्र के बीच एक रिश्ता होता है और गुरु शिष्य के बीच एक रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते के बारे में बताइए।
0: मुझे कई बार मेरा गाना सुन के कहते थे कि थोड़ा और रियाज करो, थोड़ी और मेहनत करो, ये जो नाम हो गया है उस चक्कर में मत फंस जाना। लेकिन मुझे भी थोड़ा ये रिग्रेट है, मुझे अफसोस है कि मैं उनसे कुछ 5 साल और सीखना चाहता था, लेकिन मेरा नाम ज़रा जल्दी हो गया। और एक बार नाम हो जाए फिर हम फंस जाते हैं अपने कार्यक्रमों में, सारी दुनिया घूमने में। तो एक ही रिग्रेट मेरे अंदर है कि मेरा नाम थोड़ा जल्दी हो गया, 5 साल बाद हो जाता तो मैं शायद और अच्छा गाता और सीख पाता।
1: सर, हम सब तो मंत्रमुग्ध होते हैं आपकी गायकी से और पिताजी पुरुषोत्तम दास जी की गायकी सुनकर। अब हम चाहते हैं कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की कोई भजन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: हाँ, एक उनका भजन बहुत ही सुंदर है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भजन बिंदु स्वामी का लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि पिताजी का गाया हुआ ये भजन पूरा सुनाया जाए।
1: जी।

0: ऐसी लागी लगन। आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत, फूल बने अंगारे। इस फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की है, रचना आनंद बख्शी की और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

भूले बिसरे गीत में ये पहला गीत अभी आपने सुना फूल बने अंगारे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी की रचना थी, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अगला गीत सुनते हैं। नगमा फिल्म से ये गीत है शमशाद बेगम की आवाज में, नाशाद का संगीतबद्ध किया गीत।

0: शमशाद बेगम की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म नगमा से। आइए अब सुनते हैं एक संदेश।
1: कहिए,
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत आह फिल्म से। हसरत जयपुरी की रचना है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज लता मंगेशकर की।

ये गीत आपने सुना फिल्म आह से लता मंगेशकर का गाया गीत था, हस्ते जयपुरी के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं हुस्न का चोर फिल्म से संध्या मुखर्जी का गाया गीत, राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत है, बुलो सी रानी का संगीत।

0: जाने वाले ये गीत अभी आप सुन रहे थे हुस्न का चोर फिल्म से संध्या मुखर्जी की आवाज में।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब आपको सुनवाते हैं 2 बीघा जमीन फिल्म से शैलेंद्र का लिखा, सलिल चौधरी के संगीत से सजा गीत, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की स्वरों में।

डूबेगा जमीन इस फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर मन्ना डे और साथियों की स्वरों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं टैक्सी ड्राइवर फिल्म से किशोर कुमार और साथियों का गाया गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: शरीर की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ,
0: किक किक किक किक,
1: ट्रेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म से ये गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की ये आखिरी प्रस्तुति शबाब फिल्म से। लता मंगेशकर का गाया गीत, शकील बदायूनी के बोल हैं और संगीत है नौशाद का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे शबाब फिल्म से। शकील बदायूनी की रचना थी, संगीत था नौशाद का, और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। विको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरटीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया और कार्यक्रम हम ही राही प्यार की में मैं आपका स्वागत करती हूं और आपको सुनवाती हूं ये पहला गीत विश्वास फिल्म से मनहर उदास और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में गुलशन बावरा की बोल कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत गुरबानी फिल्म से। कंचन, मनहर उदास और आनंद की आवाजों में इंदीवर का संगीत है।

0: हर उदास कंचन और आनंद की आवाजों में
1: मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे।
0: लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मंजिल मंजिल फिल्म से गीत, आशा भोसले शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

0: मंजिल मंजिल फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आपने सुना।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जान

आइए आपको सुनवाते हैं नदीम श्रवण का केस धुन से सजा गीत। गीतकार है समीर और अनुराधा पोडवाल मनहर उदास की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है सड़क।

अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की आवाजों में ये गीत आपने सुना फिल्म सड़क से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लावा से अगला गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में लावा फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे और ये गीत बना कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की आखिरी पेशकश। इसी के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की यहीं संपन्न होता है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार

0: का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित

0: कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, यह बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। ये हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: लूट गई चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो

0: अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

0: के ही सो जाएंगे।
1: तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIR KANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
4: कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

रवि जी, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करते हैं सभी के लिए मंगल कामनाओं के साथ, और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम चित्रलोक। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग श्रोताओं। पहला गीत सलाम नमस्ते, इस फिल्म से कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाजें हैं। जयदीप साहनी का लिखा गीत, संगीत विशाल शेखर का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की सलाम नमस्ते फिल्म के इस गीत के साथ। कुणाल गांजावाला और वसुंधरा दास की आवाजें थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं रेड 2 फिल्म से जुबीन नौटियाल का गाया गीत, मनोज मुंतशिर, पूर्णम अलाहाबादी, नुसरत फतेह अली खान का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान संगीतकार हैं।

दम लगा के हईशा इस फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में ये गीत। वरुण ग्रोवर का लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा।

0: दमलका के हईशा फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में आपने ये गीत सुना और अब सुनिए एक संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजा, सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना।

कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कभी अलविदा ना कहना फिल्म से। सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास की आवाजें हैं।

सोनू निगम, अलका याग्निक और वसुंधरा दास का गाया गीत कभी अलविदा ना कहना फिल्म से अभी आपने सुना। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलवाले फिल्म से अगला गीत, अमित मिश्रा, अनुष्का मंजंदा, अंतरा मित्रा का गाया गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और धुन बनाई है प्रीतम ने।

ये गीत था फिल्म दिलवाले से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज ने। नीलेश मिश्रा का लिखा गीत है, धुन इस बार फिर से प्रीतम की बनाई हुई, और फिल्म का नाम है बजरंगी भाईजान।

बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनवाते हैं ये गीत परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जिगर का गाया गीत है, आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जिगर का ही संगीत है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तनु वेट्स मनु रिटर्न्स फिल्म से स्वाति शर्मा ब्रिजेश सांडल्य की आवाजों में ये अगला गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जावेद अली का गाया गीत सुनिए। इस गीत के गीतकार हैं रकीब आलम। देवीश्री प्रसाद का संगीत है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज़।

0: पुष्पा द राइज फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डर

0: करता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लव यापा से।

लव्यापा फिल्म से ये गीत आपने सुना, जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। गब्बर इज बैक इस फिल्म से सुनिए अगला गीत। देव नेगी परुमा दास गुप्ता की आवाज।

कुमार का लिखा गीत था, चितरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देव नेगी और परोमा दास गुप्ता की आवाजों में ये गीत आपने सुना।

सत्यमेव जयते टू फिल्म से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में। नासिर काजमी और मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान का संगीत, बत किया ये गीत।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में अभी अपने गीत सुना सत्यमेव जयते टू फिल्म से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा गीत प्रीतम के संगीत से सजा फिल्म कॉकटेल से।

फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न

0: होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो इसी कामना के साथ अब दीजिए आज्ञा, पूजा नारायणिया को नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
4: GNM, ANM, Paramedical, BSc Nursing, Lab Technician जैसे courses के लिए आज ही join करें Chandni School of Nursing and Chandni College of Nursing, Vikas Nagar, Kanpur.
5: कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मैं आपसे आज के फनकार कार्यक्रम में मिला और ये बिछड़ने की बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जो हैं आज के फनकार, उनकी आवाज के जरिए कोई ना कोई बात तो आप तक पहुँचानी है सरकार।

हाँ, हर किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। शायर ने कहा भी तो है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी करने आया हूं या आज के फनकार कार्यक्रम में कौन से कलाकार की बातें करने वाला हूं, ये आपको बताने आया हूं। तो पहले जरा ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद इस फनकार की बातें हो रही हैं। इनकी आवाज जाने माने पार्श्व गायक मुकेश से मिलती जुलती थी, इसका इनके करियर पर भी काफी असर पड़ा। मुकेश ने इनको काफी आगे भी बढ़ाया और आगे चलकर इन्होंने अपना एक पक्का और मुकम्मल रास्ता तय किया।

दोस्तों, मनहर उदास जाने माने गजल गायक पंकज उदास के बड़े भाई हैं। दरअसल एक ही परिवार के तीनों भाई गायक बने। सबसे पहले मुंबई आए मनहर उदास, उसके बाद आए पंकज उदास और फिर निर्मल उदास। लेकिन घर में गाने की परंपरा शुरू से थी नहीं। दरअसल मनहर उदास रेडियो पर गाने सुनते थे और साथ साथ गुनगुनाते थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम तब तक नहीं ली थी जब तक कि उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना पहला गाना गाने का मौका नहीं मिला था। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि मनहर आखिर मुंबई आ कैसे गए। दरअसल मनहर पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की। बचपन से ही गाने का शौक था। उनके एक रिश्तेदार एक फिल्म बना रहे थे, उसमें एक गाना गवाने के लिए उन्होंने मनहर को मुंबई बुलाया। मुंबई में मनहर ने एक नौकरी कर ली और बचे हुए समय में वो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास बैठा करते, उनके स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग देखा करते और सीखा करते। ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्म विश्वास का ये गाना मिला।

गाने के बाद भी मनहर उदास का सफर आसान नहीं रहा। ये वो दौर था जब मुकेश फिल्म संसार में मौजूद थे। मुकेश के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे बड़े और दिग्गज गायकों के बीच एक युवा गायक को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्हीं दिनों में मनहर उदास अलग अलग जगह पर जाकर गाने गाते, शोज करते, संगीतकारों से मिला करते और अपने गाने सुनवाकर नए गानों की तलाश में रहते। एक बार मनहर उदास को लता मंगेशकर की ओर से एक संदेश आया कि वो उनके साथ एक शो में गाएं। मनहर ने लता जी के साथ एक लाइव शो में श्रोताओं के सामने गाया और उसके बाद फिल्म अभिमान का एक गाना उन्हें मिला। लता जी ने एसडी बर्मन से आग्रह किया कि उन दिनों बन रही फिल्म अभिमान में मनहर से कोई गीत गवाया जाए। सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे।

शुरुआत में मनहर पर ये इल्जाम लगे कि उनकी आवाज मुकेश से मिलती जुलती है, लेकिन आगे चलकर उनकी आवाज एकदम बदल गई। उन्होंने मुकेश से एकदम अलग रास्ता तय किया।

संगीत के संसार को मनहर ने फिल्मी गीत ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने भक्ति गीत भी बहुत सारे गाए हैं और भक्ति गीतों के मामले में उनकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। इसके अलावा मनहर की एक और खासियत है और वो है गुजराती गजल। मनहर ने गुजराती गजलों की परंपरा को शुरू करके उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज गुजराती गजल और मनहर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आइए अब मनहर के कुछ बेहद मकबूल गाने आप तक पहुंचाए जाएं। हम तो

0: दोस्तों हम आए तो समय पर ही थे और जा भी समय पर ही रहे हैं, इसलिए इस गाने के जरिए आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम देर से आए और जल्दी जाए और ऐसा ही भी ठीक नहीं, क्योंकि मनोहर के बारे में इतने सारे किस्से हमने आपको बताए, उनके तमाम मशहूर गाने भी आपको सुनवाए और अब इजाजत लेने का वक्त आ गया। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी, अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गाँव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे। और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा, यह इंसान, यह आदमी,

0: तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ। हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं।
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की। वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन लें।
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे, और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं, नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए, और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे, और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था, और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
0: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना, और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
0: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई
1: जी।
0: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके MA वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं BA होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज

0: थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पूना गया, पूना यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
0: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था तो उसमें उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो, मैं सिखाता हूं तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट होते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनाया सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी जी
1: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने भी काई चेत, वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जोक कर रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दळवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
0: वाह,
1: विजय मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजय जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए, लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे

0: कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज़ बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया। तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बिठाया, वो बातें करने लगे। अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी

0: तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं, आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। और लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है, वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था
1: जी।
0: और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए, हैंडसअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसअप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा, दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया,
1: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग

0: आज भी याद करते हैं
1: जी जी।
0: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
1: जी जी जी मैं सचमुच भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहाँ पे फ़ोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है आप आइए आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे वहाँ भी नाचने लगे कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बहुत अच्छी फिल्म है अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो खुद उधर जाने की ज़रूरत नहीं अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बेटक नहीं है। मैं वहीं रह गया
0: प्रीमियर में नहीं गया
1: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी कागज़ के फूल और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन

0: किशन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
1: जी।
0: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
1: जी।
0: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
1: जी।
0: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
1: जी।
0: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
1: जी।
0: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
1: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
0: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
1: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
0: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
1: जी,
0: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
1: महारानी
0: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
1: जी।
0: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूँगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
1: जी।
0: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
1: जी जी।
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले ज़रूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा।

0: तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक ज़माने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार है वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत, देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग, हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह, लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने जी। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था, मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।

0: मियाई हो गई जैसे
1: जी जी।
0: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
1: जी,
0: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
1: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
0: बहुत पुरानी फिल्म है
1: जी
0: ये।
1: जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद।
2: विकसित भारत की तैयारी ये है अपना प्रयास, जनगणना में पहली पारी आपका घर आवा।
3: सिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: राजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का

0: अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितने उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और दिग्विजय जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमन रमानी का संगीत था सोजे दिल, इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया। ना बाबा ना, ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन रख सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को। और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आहा सुचित्रा। इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन और सलीम, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगथरिया और श्रेय घोषाल की आवाज़ है, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वितरी कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्

0: सीवीएम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनकी ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: रामलखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को उनके जन्मदिन के मौके पर। सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: मनन उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनहर उदास के आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मनहर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।
1: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो

0: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
1: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग।

0: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
1: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आज ही आएं। विकास नगर कानपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जांबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

मनहर दास और मोहम्मद अजीज की आवाज में नाम फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, यादों की महफिल कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मन उदास कंचन और आनंद की आवाज में आप सुन रहे हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत, इंदिवर के संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना। कंचन मनरदास और आनंद की आवाज है, इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनरदास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं, और अब सुनते हैं मनरदास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम के शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुंचा ही दी हैं, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आपके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी ही जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि गानों की जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है, हमारी जो लिस्ट है, हमने जो सोच कर वो इबारत लिखी है, वो सोच आपकी सोच से मिल जाए और वो गाने मैच कर जाए। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गाने ना मैच करें, फिर भी आप फेसबुक कमेंट्स के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाएं। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहाँ पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल, और कभी ऐसा ख्याल जो महका दे मन। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी गाती झूमती और रचती है 100 अफसाने, और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छांट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए ये आपके कमेंट्स देखकर हमें ये अंदाजा हो गया है कि आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट काफ़ी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन के जो गीत हैं वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही ढर्रे पर, सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का, हमसे बांटिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और हमें ये भी बताइए कि इसमें आवाज किसकी है।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: मन्नाडे की आवाज में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो जरूर शामिल होगा। तो बिल्कुल सही बात तो है, क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है, ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं, और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुँचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली हैं उससे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि पिछले जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफ़ी सुविधा हो जाती है, ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारी कौर साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही चीजों

तो इसमें भाग नहीं ले रहे, तो ये तो जरा अच्छी बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के शब्दों की सूची कुछ इस तरह से हो सकती है, जिंदगी, पहेली, सवाल जवाब, मुश्किल, ख्याल, महका, मन, नदी, धारा, उलझन, गाती, झूमती, रचना या रचती, अफसाने, हकीकत, सपना, कहानी, अनजानी, जानी पहचानी, सहारा बेसहारा, जीत हार। तो एक तरह से इन्होंने इबारत में से सारे शब्द उठा लिए हैं, क्यों इनकी बात तो सच होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शब्द इन्होंने चुन लिए हैं एक साथ। तो हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने बहुत सारे गीत भी लिख भेजे हैं और जिंदगी से संबंधित अपने विचार भी हमारे साथी हम तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन आज की इबारत में जैसे कहा गया कि ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, तो हमें ये बताइए कि आपको आपके सपने याद रहते हैं? क्योंकि कई बार सपनों में एक अलग सी कहानी चलती रहती है, हम अलग जगह यात्रा करते रहते हैं, कई बार तो कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी चल रही होती है ऐसा लगता है। तो क्या आपने कभी अपने सपनों में कुछ ऐसी कहानी देखी है जो आपके जीवन में कभी नहीं हो सकती, जिंदगी से बिल्कुल अलग एक ऐसी जिंदगी आपने सपनों में जी हो? तो बताइए उसके बारे में, कोई ऐसा सपना जो आपने देखा हो और आपको अब तक याद हो बहुत दिन बीतने के बाद भी। और क्योंकि हमने ये सवाल कर लिया है तो एक सवाल से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम

0: वो तो है स्कूल का टीचर, हरदम जो चिल्लाए। क्यों बच्चों, ठीक है ना?
1: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर।
0: क्या कहा?

0: देखो तो एक रंगीन फिल्म है जिसकी हुई है जुगली, करेक्ट?
1: नो सर, रॉन्ग आंसर।
0: अच्छा, ये भी गलत?
2: जी हाँ।

0: सब जानो इस दुनिया का हाल, अब ना करो सवाल बच्चों, अब ना करो सवाल।
1: नर्तकी फिल्म का ये गीत आपने सुना और ये सवाल हमारा था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी इस बात को लेकर काफ़ी सोच विचार में है कि कब आती है पोस्ट, किसी का कहना है कि कहा जाए उसमें एक वीडियो पोस्ट किया जाए, पर हमें तो लगता है कि इबारत पढ़ना और उसमें से शब्द चुनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वीडियो सुन सुनकर आप को लगातार वीडियो सुनना पड़ेगा हर शब्द को पहचानने के लिए। खैर, ये पहेली तो हम आप पर ही छोड़ते हैं कि किस तरह से क्या होना चाहिए, लेकिन हमने सवाल आपसे पूछा था कि भाई कोई सपना ऐसा आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने ज़िंदगी में कभी सोची ही ना हो, हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहती हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए, तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में

अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है। मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म, बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बंद कर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी, पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे सपने दीवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अतः चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि

जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। ये उन्होंने कहा। हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती, अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफ़ी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुने तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहाँ उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही हैं अपने सपनों में। किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
3: GNM, ANM, paramedical, BSc nursing, lab technician जैसे courses के लिए आज ही join करें चांदनी School of Nursing and चांदनी College of Nursing, विकास नगर कानपुर। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में। मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर। नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियाँ चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला। एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं। मन्ना डे की आवाज़ है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं। हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था, नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता, ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, CID फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाजें हैं इस गीत में।

तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारे लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था, तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज़्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, ख़ास तौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीज़ें ठीक नहीं हुई। भई ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना,

वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज़्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था? फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

जब बात हो रही है जिंदगी की, जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। ये हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने

0: गई चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारों के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम

0: बचमाएंगे, जैसे सेठ बड़ा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे।

0: परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से

0: सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
2: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए

0: कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

भूख तुम अंतर छू छू छू सिंधबाद देश लड़कू मेरा नाम चिंचिंचू।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलाबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मनमोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लाके होशियार खबरदार बच के रहना देख रहा।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रखी सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
2: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती हैं है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा।
1: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
2: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
2: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था
1: मुझे मन। ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़िया हाथ में पहनी हुई है।
2: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ।
1: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय
2: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोले दाबेली बाद में खिला दूंगी।
1: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता है।
2: और इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
1: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
2: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
1: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
2: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है
1: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से इतने सुंदर से
2: आप मेंटेन है ना
1: ये तो वही तो बात है,
2: इसमें हमें संतुलन रखना है।
1: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
2: बिल्कुल आनंद,
1: संतुलन जरूरी है,
2: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
1: जी तो सुनते हैं गीत।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
1: तो कश्मीर चले?
0: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
1: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
0: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
1: कितनी
0: वो है
1: पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है, और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और टिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफ़ेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
1: अब जैसे प्लेन स्टाइल, यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ, कढ़ाई, डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें खास आकार की सादगी
2: ज्यादा बोना अपनों के लिए सबसे सही, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: शैली है जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियां उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना?
1: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है, या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
0: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न बनाया जाता है, और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत यह है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
1: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियाँ और पश्मीना सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है, और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
0: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ

0: 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध है, और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है, फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफ़ी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिज़ाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है। ज्यादा बोनस अपनों के लिए
2: सबसे सही आरटीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं। अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरटीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

0: तो सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के कमेंट्स लिखे हैं,
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो, मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: धीरे बहुत स्वस्थ रहते थे, और काम कितना करते थे पुराने ज़माने के लोग।
0: बहुत लोग, सब घर में चक्की भी चलना है, तो गेहूं भी पछोरना है,
1: पानी भरना है, कुएं से पानी निकालना है, कितना सारे काम,
0: बहुत सारे काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो गई, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। हाँ। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे भोजन में, तो इतनी आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ, जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूं उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजरी रही थी इस गाने है ना, जब हाँ। अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती है।
1: तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
0: बहुत सारे हमारे साथी,
1: अच्छा एक साथी और लिखते हैं, सुनाली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
0: और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से।
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या बात है?
1: बहुत सुंदर बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन है पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथ ही लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी। ऐसा लग रहा था
1: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊं। कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और अधिक करना चाहिए। यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं।
0: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
1: खाया जाता है,
0: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
1: तो उन्हें कैसे मालूम होगा? हमने ही नहीं बताया।
0: हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है, तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें ने लिखी है। और हम अपने साथी से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
1: पढ़ने में दिक्कत नहीं आती।
0: हाँ, वो इजिली सी आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि

0: सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
1: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा ना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता था। ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है ना,
0: इसमें मजा आता है जिसको लगा है मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: और अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, तो वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें

0: अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं। तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो आसानी होता है। बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है। इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है, लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए। हाँ,
1: हमें खास बात है, आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, आलू के बदले हम शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खाके ही खुश रह सकते हैं, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खाके भी हम खुश रह सकते हैं,
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे,
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है, डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता
1: है।
0: और आप गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना, तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये सब डालना है, और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज,
0: कभी कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
0: सचमुच इंदौर बार बार जाने को जी करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सब।
2: जॉइन द नोबल प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग वेयर एवरी डे ब्रिंग्स द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस।
0: और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी है उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा।
0: और आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंशी वर्मा का
0: नमस्कार।
2: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.

CNM, ANM, Paramedical, BSc Nursing, Lab Technician जैसे कोर्सेज के लिए आज ही ज्वाइन करें चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, विकास नगर, कानपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जानी माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू ले के दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो

0: जमाना लौट आया जब आप विद्या भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था, और एकदम तुमसे मिलके और विद्या भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया, और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ। जी
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल। अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुन कर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर वो फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा,
0: जी
1: जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
0: जी
1: उनकी
0: जी
1: आवाज सुना, आम अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते हैं, अच्छा अनाउंसर है आप, तो ये अनाउंसर का वो
0: दर्जा होता
1: दर्जा
0: था
1: था मतलब, और
0: जी।
1: वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई
0: हाँ
1: जानता ही नहीं आपको,
0: जी,
1: लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना,
0: जी
1: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू शुरू हुआ था,
0: जी जी
1: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
0: क्या
1: कवि के रूप
0: बात है
1: में, एक
0: जी।
1: ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव
0: जी
1: उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज
0: हाँ
1: मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक, और उस जमाने का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या,
0: जी
1: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा,
0: जी
1: और न सिर्फ आऊंगा,
0: बल्कि हेड करेंगे।
1: उसका कार्यक्रम का मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ, चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ, कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल, मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
0: क्या
1: भर
0: बात
1: का।
0: है, क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
1: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से

0: जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ। तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु। तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, जयपुर से होते हुए थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्टल टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में ही थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए। तो आंध्रा उससे पहले हमारे निकल चुके थे और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात
0: है, इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले। और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको?
0: नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा,
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: है ना ये गाना,
0: मेरा पसंदीदा गाना है
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे
0: वो टूरिस्ट मैप पर था।
1: थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी,
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती थी।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दोहरिया लगता, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे। ये सब भी होता था
0: जी, ये तो हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें
0: जी,
1: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
1: गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता था,
0: खुद गाते थे।
1: तो वो घर वाले भी बार बार बोलते, तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उसमें धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
0: क्या बात है, और तब से ही ये

0: गायकी वाला मामला आपका
1: हाँ, मेरे
0: कहने
1: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
0: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
0: जी।
1: एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब BA का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
0: जी।
1: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था और एक कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उसमें ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
0: वाह,
1: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
0: क्या बात है।
1: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो।
0: हाँ।
1: उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं। होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं।
0: वाह वाह।
1: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
0: गजब।
1: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
0: क्या बात है,
1: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला था टिकटेड हाउसफुल रहा, रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
0: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
1: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
0: अच्छा।
1: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
0: उस दौर में जब आप
1: तो, तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
0: जी,
1: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
0: बिल्कुल।
1: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
0: हाँ।
1: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
0: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
1: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुनाऊंगा,
0: बिल्कुल,
1: गणपत लाल डांगी,
0: हाँ,
1: इनका हवा महल में
0: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
1: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाटक और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेस लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
0: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
1: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
0: जी,
1: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
0: अच्छा।
1: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
0: जी, तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
1: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं MA मैंने किया ही किया था
0: जी,
1: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
0: बहुत ही मशहूर
1: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर 1 अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
0: जी,
1: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कपूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पे लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब

0: होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई। मैंने वहां ज्वाइन किया, एक साल वहां काम किया।
1: तो वहां तब तो पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकिर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर।
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे।
1: हाँ,
0: हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी,
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: एक साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, में सब
1: बिल्कुल
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे, सब कुछ। और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें हाँ, पढ़वाया जाता
0: था। और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे,
1: क्या बात है, क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई इधर उधर
1: जी,
0: तो रेनू में सुना हूँ।
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।

0: और ये नवगीत का शुरू हुआ था तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाफती हवाओं से
0: से।
1: क्या बात?

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?

0: बहुत खुश हुए। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला थे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल
1: हाँ
0: बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना, हमारे
1: मिनिमम
0: नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर वक्त संडे आता था,
1: हाँ
0: पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था। तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं,
1: जी,
0: पिताजी का एक एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे
1: तो
0: या
1: आपके
0: था।
1: जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा
0: हाँ,
1: लगा है कि नहीं, क्या
0: तो
1: चल रहा है मन में।
0: बस वो उनको सूचना जरूर, वो और हमारे संवाद माँ से होता था,
1: जी
0: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना, साहब नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से एक घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश
1: जी जी
0: होते थे,
1: जी
0: लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे,
1: वो
0: बताते
1: दौर भी
0: नहीं
1: ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ
0: थे।
1: करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटिए कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, और आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है, और आपकी कामयाबी उन्हें कितना खुशी दी दे
0: नहीं,
1: देकर
0: बिल्कुल, ये
1: गई।
0: पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया,
1: जी
0: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं, तो वो पिता के संस्कार हैं, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खां, बड़ा
1: बाप
0: कोई
1: रे,
0: नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए जिनको हमने बचपन में आगे बैठ
1: आमने
0: के सुना
1: सामने
0: है,
1: देखा। जी
0: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
1: बाप रे,
0: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूँ तो हमारी कॉलोनी में, जो मैंने कहा ना वो एक मिनी भारत था वो,
1: जी,
0: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था, मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक
1: ये तो एक नया खुलासा है हमारे
0: था।
1: लिए।
0: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना,
1: हाँ,
0: किसी के साथ मजाक कर लेना, किसी को
1: तंग
0: आते
1: कर
0: जाने
1: लेना।
0: को तंग करना या मस्ती करना,
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
1: शिकायत आती थी।
0: शायद माँ के पास आती थी कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
0: हाँ मेरे बड़े भाई साहब थे,
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: नंबर दो था, तो
1: जी
0: पहले नाम ऐसे ही रखे जा रहे, घरेलू
1: बिल्कुल
0: नाम।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बड़े भाई साहब श्याम और मेरा नाम छोटू।
1: जी,
0: खैर, तो वो छोटू की शिकायत जो
1: रोज आ रही
0: है,
1: है।
0: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी जो
1: प्रोटेक्शन,
0: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और
1: हाँ
0: पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे, वो तो वो मैं भूल नहीं
1: उसका जिक्र ना ही
0: सकता। तो ये एक
1: करें
0: अच्छा बचपन बीता,
1: जी।
0: और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच,
1: अरे
0: मतलब घर में
1: गजब।
0: वो पारिवारिक रिश्ते के पिता नहीं थे वो, हम
1: हाँ, वो अपनी दुनिया
0: वो अपनी
1: उनकी।
0: दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय वाय पी और फिर सीधा रविंद्र मंच, फिर वहां से लौटे, खाना वाना खाए, सो गए, मतलब
1: हाँ,
0: बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था। तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो, और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी, छूट भी, वो सब माँ से मिली।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में मां झलकती हैं?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा, तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास, मतलब सरकारी कर्मचारी जो है, उनकी
1: बिल्कुल
0: कॉलोनी थी, तो हम उसी में, तो लेकिन बहुत खुशहाल, मतलब मैं अपने आप को अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे, और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं, एक था
0: हाँ,
1: बचपन,
0: एकता बचपन
1: क्योंकि
0: जरूर,
1: ये
0: हाँ
1: जो
0: बिल्कुल
1: बचपन
0: बिल्कुल
1: के जो दिन हैं उनके
0: बिल्कुल
1: उनके
0: बिल्कुल
1: नाम ये गाना
0: बिल्कुल
1: है।
0: जी।
2: इस गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: नहीं, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं जिन्हें मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक थे तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी,
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों के।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तो एक तरह से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात
1: नहीं
0: है?
1: सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके साथ बैठता था।
0: अब ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, ये इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, उसने मंची ये नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नवर सिंह जी भी, हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ाव। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारा अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों का वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: तो सारे अखबार आते थे, मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, धर्मयुग, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता वहां जाकर के, घंटों घंटों वहीं बैठता था। तो और बाकी लोग जो आके चले गए, और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ रहा हूँ, फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं, मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे।
0: जी जी।
1: तो बचपन से पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसे होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनना, तो अमूमर लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे। तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में, दो पंक्तियों में जो
0: सारी बात
1: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमूमर लोगों को हमारे जो साथ में थे, अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजा साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे, मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद फिर गजल ने मुझे भी अपना लिया।
0: क्या प्यारी बात है। तो

0: शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
1: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकजदास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
0: जो आपकी पहचान के साथ चिपकी हुई है।

और दोस्तों, IIT कानपुर के स्टार्टअप ने 3 साल की रिसर्च के बाद एक खास AI चश्मा विकसित किया है, जो कि ऊंचा सुनने वालों के लिए वरदान बनने वाला है। स्टार्टअप के फाउंडर प्रतीक रघुवंशी ने बताया कि समाज में ऊंचा सुनने की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत अधिक है और इसी समस्या को देखते हुए ये विशेष ग्लास वाला चश्मा तैयार किया है। ये स्मार्ट ग्लास देखने में बिल्कुल सामान्य चश्मे जैसा है, लेकिन इसके अंदर कई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं। इसमें AI आधारित ऑडियो सिस्टम लगाया गया, जो आवाज को बेहतर तरीके से उपयोगकर्ता तक पहुंचाने में मदद करता है। FM 103.7 पर आप हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ। प्रोग्राम चल रहा है गुड इवनिंग कानपुर।

और अब हथकरघा कारीगरों के लिए एक जरूरी खबर। बताते चलें कि संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव के बुनकर अपना आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल handloom.upsdc.gov.in पर 18 जून तक अप्लाई कर सकते हैं।

और दोस्तों, अगर आज के मौसम की बात अब करें तो जैसा कि आपने अनुभव किया ही होगा कि आज का मौसम बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जो आज का अधिकतम तापमान था वो 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दिखाई दिया। और आगामी 5 दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, यानी कि मौसम जो है ना वो सुहावना बना रहेगा।

दोस्तों, इस गाने के साथ ही आज का गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल मैं यानी आपका रेडियो दोस्त आशीष आपसे मिलूंगा बस थोड़ी ही देर में विविधा कार्यक्रम के साथ। तब तक बने रहिए FM 103.7 पर विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: FM 103.7 पर आप हैं, विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ। शाम के 6 बज चुके हैं और हम आपके लिए विविधा के अंतर्गत लेकर हाजिर हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम अर्चना। अर्चना कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं सीमा मिश्रा और साथियों की आवाजों में इस राम धुन के साथ।

दोस्तों, भक्ति में वो शक्ति है जो मन को शांति और जीवन को सही दिशा देती है। प्रोग्राम का अगला भक्ति गीत आ रहा है वीना सहस्त्र बुद्धे की आवाज में।

0: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
1: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज ही आएं। विकास नगर कानपुर।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़ी है,
4: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: FM 103.7 पर यह है विविध भारती का कानपुर केंद्र और इस समय कार्यक्रम चल रहा है अर्चना। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत आ रहा है सीमा मिश्रा की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सच्ची श्रद्धा और भक्ति। भक्ति में इतनी ताकत है कि टूटे मन को भी मुस्कुराना सिखा देती है। प्रोग्राम का अगला भक्ति गीत आ रहा है शुभा मुद्गल की आवाज में।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फिलहाल मैं यानी आपका रेडियो दोस्त आशीष आपसे मिलूंगा बस थोड़ी ही देर में गाने तराने प्रोग्राम के साथ। बने रहिए FM 103.7 पर विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ।
1: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
2: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज ही आएं। विकास नगर कानपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM 103.7 पर आप हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त आशीष लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम गाने तराने। गाने तराने प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे वो गाने जिनमें मुलाकात शब्द आया है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत इस गाने के साथ।

जी हाँ दोस्तों, जब किसी से पहली मुलाकात होती है तो दिल में जो जज्बात होते हैं उन्हीं जज्बात को बयान कर रहा था ये गाना। वैसे ये मुलाकातें किसी से मिलने का नाम नहीं होती, ये वो पल होते हैं जो जिंदगी की कहानी बदल देते हैं। कभी कोई अजनबी खास बन जाता है तो कभी कोई खास फिर से मिलकर और भी करीब लगने लगता है।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान की कोई ना कोई मुलाकात ऐसी ज़रूर होती है जो उसे हमेशा याद रहती है। कुछ मुलाकातें चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, तो वहीं कुछ मुलाकातें हमें चिंता और उदासी में ले जाती हैं, और इस तरह से हर मुलाकात एक याद बन जाती है। वैसे अगर आपका किसी फ्रेंड से मन मुटाव हो गया है तो छोड़ दीजिए नाराजगी और कर लीजिए उनसे एक मुलाकात, क्योंकि ये मुलाकात तो सिर्फ एक बहाना है

FM 103.5 सात पर आप हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ प्रोग्राम चल रहा है गाने तराने। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त आशीष। आज गाने तराने प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं मुलाकात शब्द पर आधारित गाने। दोस्तों आज टेक्नोलॉजी के युग में शायद मुलाकातों का सिलसिला कम होता जा रहा है, लेकिन क्या जो एहसास किसी से मुलाकात करने पर होते हैं वो दूर बैठकर महसूस किए जा सकते हैं? मेरे इसी सवाल का उत्तर देने आ रहा है प्रोग्राम का ये अगला गाना।

इस गाने के साथ ही आज का गाने तराने प्रोग्राम अब यहीं पर समाप्त होता है। आज आपने सुने पराया धन, अजनबी, खानदान और सिर्फ तुम फिल्मों के गाने। अब अपने रेडियो दोस्त आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला। बने रहिए FM 103.7 पर विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

फौजी साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम जयमाला में। मैं हूं अनुराधा, आपके आज के संगीत के सफर की साथी। लीजिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: वीर जारा फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा। और अब अगला गीत कैलाश खेर की आवाज में, भारतीय सेना गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का संगीत। सागर फिल्म से ये गीत था।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प

0: वो बातों का गुलदस्ता और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। जयमाला के शेष गीत कुछ ही पलों में।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
5: GNM, ANM, paramedical, BSc nursing, lab technician, जैसे courses के लिए आज ही join करें Chandni School of Nursing and Chandni College of Nursing, Vikas Nagar, Kanpur.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म से, गुलजार ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत। और अब अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, प्रेम पुजारी फिल्म का नाम है।

0: पैरों में ये क्या छुपा है शरारे जैसा।
1: नाखुदा फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

राग भैरवी पर आधारित ये गीत था और इसे आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। सरगम फिल्म से इसे लिया गया था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राग झंझूटी पर आधारित।

जिद्दी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। इस गीत के साथ ही आज का राग अनुराग प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। आपको बता दें कि ये गीत राग मिश्र पीलू पर आधारित था।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
2: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आज ही आएं, विकास नगर कानपुर।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आज सुनिए झलकी। ना बाबा ना। लेखक है संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीक।
1: कौन है? अरे कौन है भाई?
2: क्या है जी, कौन है? मुझे तो डर लग रहा है।
1: अरे बिल्ली होगी, सो जाओ।
2: नहीं जी, एक बार उठ के देख तो लो, तुम डर तो नहीं रहे?
1: तुम भी क्या बात करती हो, मैं भी कहीं डरता हूँ, देखता हूँ। अरे
2: क्या हुआ?
1: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था ना बिल्ली होगी, वही थी।
2: तो इसमें चीखने की कौन सी बात थी, डर गए क्या?
1: अरे नहीं, वो अचानक कूदी ना तो चीख निकल गई।
2: मैं तो कहती हूँ जी, मुझे तो बहुत डर लगता है।
1: तुम्हें डरने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही।
2: वो बात नहीं, यूं भी दिन में तुम ऑफिस चले जाते हो, पीछे मैं अकेली रह जाती हूँ, शाम को भी कभी कभी देर से आते हो, ऐसे में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ।
1: तो मैं क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना।
2: वो बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो पड़ोस वाली मिसेस सिंह है ना, कितने चैन से रहती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, चाहे घर पर

0: हो या ना हो।
1: वो कैसे?
0: उनके पति ने जब से अल्सेशन कुत्ता पाला है तब से वो सारा घर उसी कुत्ते के भरोसे छोड़कर चली जाती हैं।
1: अच्छा, ये बात है।
0: हाँ, और वो कुत्ता भी बहुत खतरनाक है, किसी अजनबी आदमी को तो घर के पास फटकने तक नहीं देता।
1: तो फिर मैं क्या करूँ? तुम्हारा मतलब क्या है?
0: सुनो जी, एक कुत्ता पाल लेते हैं, एक अच्छा सा ला दो ना, मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी।
1: अच्छा बाबा, ला दूंगा, लेकिन इस वक्त तो सो जाओ, रात बहुत बीत चुकी है।
0: नहीं, पहले वादा करो कि तुम एक कुत्ता ले आओगे। कितना अच्छा होगा जब मैं भी मिसेस सिंह की तरह कहीं भी आ जा सकूंगी, कुत्ता घर की रखवाली करेगा। बोलो, लाओगे ना?
1: हाँ हाँ, ले आऊंगा। अब तो सो जाओ, वरना मैं उठकर बाहर चला जाऊंगा।
0: ओके डार्लिंग, गुड नाइट। ओहो, मिसेस सिंह और मिसेस शर्मा, आइए आइए।
2: हेलो गीता, कैसी हो?
0: बिल्कुल ठीक, आइए आइए, अंदर आइए।
2: सुना है आपने बड़ी अच्छी नस्ल का कुत्ता पाला है, इसीलिए हमने सोचा चलो देखकर आते हैं। और फिर हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है, पहचान जाएगा तो काटेगा भी नहीं। हाय, मेरा तो बस 14 सुई से दिल घबराता है, बड़ा दर्द होता है। अरे मिसेस शर्मा, अब जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है, अब तो कुत्ते को पहले ही एंटी रैबिक सुई लगवा दो तो फिर कुछ भी असर नहीं होता।
3: अरे भाई, काटने के बाद भी 14 सुई का क्या भरोसा, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं फिर तो आदमी भौंक भौंक कर दम तोड़ता है, पानी देखते ही काटने को दौड़ता है और फिर हाइड्रोफोबिया।
0: अच्छा, कहाँ लगती है ये एंटी रैबिक सुई?
2: ये तो किसी भी पशु चिकित्सालय में लग सकती है,
3: इसीलिए मैं तो कुत्ता पालती ही नहीं, यूं भी जानवरों से मुझे बड़ी नफरत है। हमारे पति देवी बड़े बहादुर हैं, क्या मजाल कोई दरवाजे पर फटक जाए।
2: उनकी तो मुझे देखकर अच्छे अच्छों की घिघी बन जाती है।
3: हाँ, आपने सच्ची कहा है मिसेस सिंह, उन्होंने तो मुझे कह रखा है कि रात को अगर लगे कि कोई चोर आया है तो बस कह देना, पहलवान जी वो अपना डंडा कहाँ रखा है, और बस चोर डर कर अपने आप ही भाग जाएगा।
0: मिसेस सिंह, आपके कुत्ते का नाम क्या है?
2: भाई दीवे, मेरा कुत्ता नहीं कुतिया है, कुत्ते से ज्यादा तेज होती है, उसका नाम लूसी है।
0: कितना प्यारा नाम है।
2: जानती हो गीता, मेरी कुतिया पर रोजाना 200 रुपए खर्च होते हैं, सवेरा होने से लेकर रात सोने तक उसकी देखभाल होती ही रहती है, अच्छे साबुन से नहलाना, बाल संवारना, परफ्यूम लगाना, बिस्किट दूध वगैरह वगैरह।
3: हाय मिसेस सिंह, कितनी खुशकिस्मत हैं आप, इतना प्यारा चौकीदार मिला है आपको।
2: और वफादार इतनी कि देखते ही तुम हिलाने लगती है।
3: मैंने तो जब भी अपने पति से कहा कि हमें भी ऐसा ही एक वफादार कुत्ता ला दो तो बस भड़क उठे, वैसे तो वो मेरा कहना बहुत मानते हैं।
2: अरे भी गीता, तुम्हारा कुत्ता है कहाँ, हम तो उसे देखने आए हैं,
3: अभी बुलाती हूँ। प्रीतम, अरे हमने कुत्ता बुलाने को कहा है।
0: ये मेरे कुत्ते का ही नाम है भाई, और कोई नाम लेने पर वो सुनता ही नहीं, प्रीतम कहते ही दौड़ कर आता है। प्रीतम आजा, आओ आओ आओ।
3: आय हाय, कितना प्यारा कुत्ता है, बरसा सफेद।
0: जानती हैं, अब की डॉग शो में इसी नस्ल का कुत्ता फर्स्ट आया है।
2: वाह, आओ आजा आजा।
0: ऐसे नहीं, प्रीतम आओ आओ ना, आओ आओ।
3: अरे वाह, इतना समझदार है,
2: बहुत प्यारा कुत्ता है। अरे वाह, ये तो मेरी गोद में बैठ गया।
3: आपके पास तो यूं बैठा है जैसे पहले की पहचान हो।
2: नहीं जी, जानवरों को प्यार से पुचकारो तो फिर वो दुम हिलाते ही रहते हैं।
3: आपको तो इस बात का बड़ा तजुर्बा है मिसेस सिंह।
2: अरे ये क्या, छी छी, इसने तो मेरी 1000 रुपए की साड़ी ही खराब कर दी।
3: बहुत ही बदबू है, बड़ा बेशर्म कुत्ता है, ये जानवर होते ही ऐसे हैं, जहाँ पाया वहीं गंदा कर दिया।
2: आज ही तो निकाली थी ये साड़ी, हाय अब मैं घर कैसे जाऊंगी।
0: ऐसा भी क्या है मिसेस सिंह, थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिए।
2: नहीं जी, पानी वानी क्या, अब तो घर

0: अदाकारी साफ करूंगी। चलो भी मिसेज शर्मा।
1: ओफो, आज तो बहुत थक गया। सुनो, एक कप चाय तो पिला दो।
0: दूध नहीं है।
1: क्या कहा?
0: हाँ, अपना प्रीतम पी गया, उसके लिए भी तो चाहिए। और सुनो, तुम उसको अभी अस्पताल ले जाकर एंटी रेबिक सुई तो लगवा दो। जानते हो, किसी दिन उसका दांत भी लग गया तो आदमी भौंक भौंक कर मरेगा। और हाँ, एक अच्छा सा साबुन, कंघी, तौलिया, बिस्किट वगैरह डॉक्टर से पूछ कर ले आना। आते वक्त दूध भी ले आना, तभी चाय भी बनेगी।
1: गीता, इस वक्त मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं आराम करूंगा।
0: जाओ ना, सोचो किसी दिन उसका दांत हमें या तुम्हें लग गया तो। मिसेस सिंह कह रही थी, हाय भगवान कैसा ना करे।
1: मैं अब कहीं नहीं जा सकता, इतनी सारी फरमाइशें, अपने लिए तो कुछ हो नहीं पाता, ऊपर से कुत्ते का खर्चा।
0: तुम नहीं जाओगे?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: यही फर्क इंसान और जानवर में होता है। देखो, हमारी अभी कितने दिनों की पहचान है, फिर भी कितने प्यार से दुम हिला रहा है।
2: टेलीग्राम आया।
0: किसका है जी?
1: तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं।
0: हाय पापा, शादी के बाल पहली बार आ रहे हैं। ऐसा करो, दूध ले आओ ना, पापा को तो हर पल चाय चाहिए।
1: मैं तो नहीं जाऊंगा, सारा घर बदबू से भरा पड़ा है, हर जगह इस कुत्ते ने गंदगी कर रखी है।
0: वो तो क्या है जी, मैं सफाई वाली के भरोसे रह गई, वो आज आई ही नहीं। खैर, उसे मैं साफ कर दूंगी, तुम दूध ले आओ ना।
1: अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। मरता क्या ना करता, इनको भी आज ही आना था। हे भगवान, ये कुत्ता यहाँ रहा तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा।
0: हाय राम, बहुत थक गई। ये गंदगी साफ करते करते सिर चकरा गया। बदबू के कारण तो उल्टी सी लग रही है। अब तो कुछ करने को जी भी नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, पिताजी भी पहली बार आ रहे हैं।
1: हाँ। ये लो दूध, पहले मुझे चाय पिला दो।
0: अच्छा जी।
2: अरे ये कुत्ता,
0: अरे अरे देखो तो,
2: अरे हाँ।
0: कौन है, क्या हुआ?
1: ये कुत्ता तो सर दर्द बन गया,
2: दूर
1: अब पता नहीं क्या हुआ। कौन है?
2: अरे भाई मैं हूँ, अरे छुड़ाओ तो इस कुत्ते से।
0: पिताजी, अजी जल्दी छुड़ाओ, वरना काट खाएगा। हाय राम, खून लगता है काट खाया। हाय अब क्या होगा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुरंत जाकर सुई लगवा दो। काट लिया ना। हाय पिताजी, मेरे पिताजी पहली बार तो बेचारे आए थे। हाजी, मिसेस सिंह कह रही थी कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर, हाय पानी देखते ही, हाय मुझसे तो कहा भी नहीं जाता, ये कुत्ता नहीं मौत का पैगाम है।
2: बेटी ये क्या कह रही है तू?
1: ये कह रही है ससुर जी कि कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर मरता है।
0: अब क्या होगा, अब तो आपको 14 सुई भी लगेगी। तुम डॉक्टर को बुलाओ जी।
2: डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर क्या?
0: पिताजी, आपको कुत्ते ने जो काट लिया है, ये खून।
2: अरे ये खून नहीं बेटी, ये तो दवा की शीशी थी जो फूट गई, कुत्ता मेरे ऊपर गिरा इसलिए फूट गई, अब सारे कपड़े भी खराब कर दिए।
0: तो इसने आपको काटा नहीं?
2: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं।
0: सुनो जी, तुम इस कुत्ते को अभी हटा दो।
1: लेकिन तुम जो अकेली रहती हो उसका क्या होगा?
0: ना बाबा ना, मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन ये सफाई, ये देखभाल मुझसे ना हो सकेगी। इसको अभी मेरी नजरों से दूर कर दो, दूर कर दो इसको।
3: अभी आपने झलकी सुनी ना बाबा ना। इसके लेखक थे संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीक, और ये झलकी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए

राघव चैतन्य की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे एक विलन रिटर्न्स फिल्म से। कुणाल वर्मा ने इसे लिखा। कौशिक और गुड्डू का संगीत।

कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केके और शिल्पा राव की आवाजों में ये गीत बचना ए हसीनों फिल्म का नाम है।

मोहित चौहान की आवाज में गीत फिल्म ऊंचाई से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा, अमित त्रिवेदी का संगीत।

मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतरराज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभ

0: सरकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्य बल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना

0: करना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the four European countries.
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य

0: बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र एफएम 103.7 पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

FM 103.7 पर आप हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ। रात के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो दोस्त आशीष मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का ये पहला गाना आ रहा है गुरु फिल्म से। आवाजें हैं हरिहरन, अलका याग्निक और साथियों की। गुलजार के लिखे गीत को सुरों में ढाला है AR रहमान ने।

राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। इसके साथ ही एक और पत्र आया था दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय का। इसी गीत को सुनने के लिए हमें मेल भेजी थी रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मोज्जम शेख, फलक फातमा और बेबी अलिस्बा शेख, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, बॉबी खान और मुंबई महाराष्ट्र से मोहम्मद सलीम और निगहत परवीन। मुदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह की भी मेल आई है। पाकुड़ झारखंड से मेल आई है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद और पश्चिम बंगाल बोहड़ा गाछी से मेल आई है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत की। श्राफ रोड राजकोट से मेल आई है प्रेमा रानी जाटव, डॉली और सुरेश डोकर की। गंज डुंडवारा से मास्टर फरहत शेख और चमनपुरा मोरबी से मेल आई है प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली की। और दोस्तों अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं साजन फिल्म का गाना, जिसमें आवाजें हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण। और साजन फिल्म के इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है अंधेरी बावली मूसानगर से माजदा बेगम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद शफीक, परवीन बेगम, अली हैदर, रफत हबीब, आरिफ सोनी, सलमान वारिफ, अकबरपुर से इकरा बेगम, शफीक, अनीसा और हमराही रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्यों ने। तो आप सभी की पसंद पर आ रहा है साजन फिल्म का ये गाना। FM 103.7 पर आप हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ प्रोग्राम चल रहा है आपकी फरमाइश।

साजन फिल्म के इसी गीत को सुनने के लिए मेल आई थी गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी की। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर की भी मेल हमारे पास आई है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां की भी मेल आई है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। पुराना तालाब डुबराव से मेल आई है वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी की। सनावद से मेल भेज रहे हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना।

ग्रामवा पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहासे रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया और निशा कठेरिया, साथ ही साथ प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार हमको मेल भेज रहा है। और अब आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आ रहा है आ गले लग जा फिल्म का गाना, किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है राहुल देव बर्मन का। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मणि, मीनू, पवन, पार्थ, शिवांश त्रिपाठी और अभिजीत सिंह सांगा ने।

इसके साथ ही साथ एक चिट्ठी और आई है और इन्होंने भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है और ये चिट्ठी है कस्बा अमरोधा उत्तर प्रदेश से अब्दुल जब्बार राइन आरिफ तारिक अकबर राइन शहीद अनवर हमजा राइन आरफा आयशा आयजा कनीजा और हंजला राइन। ग्रीन रोड अकबरपुर से अमीर बाबू उमाज राइन और रेशमा बेगम साथ ही साथ जब्बार मोहम्मद भी हमको पत्र लिखकर भेज रहे हैं। और फिल्म आ गले लग जा का गीत सुनने के लिए हमें मेल भेज रहे हैं जेल रोड जालंधर से रोशन जहां मन्नत जहां इशरत जहां और मक्कार जहां।

मेल भेज रहे हैं सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल बेबी सिया और जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता और समस्त जाधव परिवार। तो आप सभी की पसंद पर आ रहा है आ गले लग जा फिल्म का ये गाना।

इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास मेल भेजी है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। गाजियाबाद से हमारे पास मेल आई है सीमा गांधी मनोहर लाल गांधी की और डोंडी छत्तीसगढ़ से मेल भेज रहे हैं मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा डोमीन।

राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से मेल आई है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू की। बीड शहर महाराष्ट्र से मेल आई है विकास बनसोड़े, रेखा बनसोड़े, अदिति बनसोड़े, वैभव शिंदे की। और हिल स्टेशन खंडाला से हमें मेल भेजी है आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे ने। और आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब आ रहा है आए दिन बहार के फिल्म से गाना आशा भोसले की आवाज में। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है बिठूर से रमेल, श्यामलाल, बिट्टन, छोटे गोपाल, नथु, छोटे लाल, निशा, अनीता, अंजू, राम दुलारी और अभिजीत ने। साथ ही साथ हमें मेल भेजी है जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल ने। चंडीगढ़ सिटी से मेल आई है सतीश अनेजा और बिमल अनेजा की।

0: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIR KANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
1: FM 103.7 पर आप हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ और इस समय कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त आशीष मिश्रा। और आपकी फरमाइश कार्यक्रम का ये अगला गाना आ रहा है नगीना फिल्म से मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। साथ ही साथ हमें मेल आई है लोहारा डोंडी लोहारा से विनोद थापा, पूजा

रानी संदीप थापा और डॉली थापा की। सहारनपुर जंक्शन से सुरेश पासवान और आशा डुकर की भी मेल आई है। और सुमित मोगा, देव मोगा, राधिका मोगा और कबीर मोगा भी सहारनपुर से हमें मेल भेज रहे हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश से मेल आई है हर्ष, विनय, विनीत, रोजस और चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा की। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधाना खुराना। तो आप सभी की पसंद पर आ रहा है नगीना फिल्म का ये गाना।

रायगढ़ से हमें मेल भेज रही हैं उमा रानी अजनबी, बेबी जोई अजनबी और डॉली बेलदार जाटो। छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी गोडिया और चंद्रनगर। महाराष्ट्र से आशा जटोलिया और देवशंकर जटोलिया।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब आ रहा है सुरेश वाडेकर की आवाज में प्रेम रोग फिल्म का गाना। संतोष आनंद के लिखे गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गाने को सुनने के लिए हमें चिट्ठी भेजी है न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर से मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, इमरान अहमद रायनी, इंजिमाम अहमद रायनी, डॉक्टर सगीर अहमद अंसारी, सौरभ सोनवानी और एम ए कानपुरी ने। इसके साथ ही हमें मेल भेज रहे हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार भी हमें मेल भेज रही हैं। न्यू दिल्ली से मेल आई है कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु की। डोंडी लोहार बालोद से मेल आई है सुखदेव जाटो और राकेश जाटो की। सहारनपुर से पथिक जाटो और अजय देव जाटव। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, साजिद अली और रुखसाना खातून। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल की मेल आई है। तो आप सभी की फरमाइश पर आ रहा है प्रेम रोग फिल्म का ये गाना। FM 103.7 पर आप हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत आ रहा है मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गव्हाड़कर, सरिता गव्हाड़कर, प्रिंस एकांश गव्हाड़कर और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गव्हाड़कर, प्रणिता गव्हाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हमको पत्र भेजा है शैलेश गव्हाड़कर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गव्हाड़कर ने। साथ ही साथ हमें मेल भेजी है नारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक ने। पहाड़गंज मुल्तानी ढांढा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक ने। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से

हमें मेल भेजी है नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ ने। और बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया जालंधर से अशोक जाठो ने। तो आप सभी की फरमाइश पर आ रहा है कटी पतंग फिल्म का ये गाना।

मोहम्मद रफी की आवाज में अब आ रहा है दुल्हन एक रात की फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के लिखे गीत को सुरों में ढाला है मदन मोहन ने, और इस गाने को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी, बिट्टू साजदा और हिना कौसर ने। दिल्ली से प्रमिला सिंह, हेमा और अंतरा सिंह ने।

होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने भी हमको मेल भेजी है। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललित खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी ने भी हमको मेल भेजी है। तो आप सभी की फरमाइश पर आ रहा है ये गाना।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आखिरी गाना आ रहा है, प्रेम गीत फिल्म से इंदिवर का लिखा, आवाज और संगीत है जगजीत सिंह का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी मेल भेजी है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह ने। साथ ही साथ हमको मेल भेजी है संभाजी चौक महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा वाघमारे और शशांक वाघमारे ने। और साथ ही साथ एक मेल और आ रही है वीरमगाम जंक्शन से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार। तो आप सभी की फरमाइश पर आ रहा है प्रेम गीत फिल्म का ये गाना।

इस गीत के साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम का ये सफर अब यहीं पर समाप्त होता है। आज इस सफर में मैं था आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त आशीष मिश्रा। यह आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
3: इसका सलूशन
2: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
3: नेचुरल है।
2: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

0: हैं अक्सर, और तब एक खाली शरीर में टूटे हुए सपनों और थकी हुई रूह के साथ जीना पड़ता है हमेशा के लिए। रूह बेजान हुई, जिस्म भी राख हो गया। रूह बेजान हुई, जिस्म भी राख हो गया। तेरे बाद मेरा हर लम्हा खाक हो गया। तेरे बाद मेरा हर लम्हा खाक हो गया।
1: अगर बेवफा तुझको पहचान।

कोई अपना बनकर ही सबसे बड़ा दर्द दे जाता है, एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो ताउम्र आपके साथ रहता है, भीतर और बाहर। सबसे बड़ी यातना वही है जब कोई तुम्हारा सब कुछ होकर भी तुम्हारा कुछ ना रह जाए, और ये पीड़ा हर रात, हर सुबह, हर पल, हर सन्नाटे में हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है, भीतर ही भीतर तोड़ देती है।

अजीब सा रिश्ता बन जाता है कभी कभी किसी से, न जीते बनता है न मरते बनता है। दिल टूट फूट जाता है, जिंदगी बेरंग सी नजर आने लगती है और जिंदगी का सफर टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर सुनसान रास्तों की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बेहद त्रासद है इन दिनों बीमार लोगों में खोजना खुद को, पता नहीं कब छूकर जिसे जागेंगे एहसास, लंबी बेहोशी के बाद पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा, पता नहीं कब टूटेगा ये सन्नाटा।

0: छाया गीत कार्यक्रम में लेते हैं अब एक छोटा सा अंतराल।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चल, नेचुरल है
2: इसका सलूशन,
1: वो भी नेचुरल है। वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिर से स्वागत है। कभी कभी कोई इंसान एक पल को सब कुछ लगने लगता है और फिर जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है। वो बात जो शुरू होनी थी शुरू ही नहीं हो पाती। वो बात जो हम कहना चाहते थे कह ही नहीं पाते। आह, कैसा दर्द होता है ये। और हम तब चुपचाप भारी कदमों से लौट आते हैं फिर से उसी रंगहीन दुनिया में। दस्तक दी मैंने, खुला नहीं दरवाजा, खटखटाया बार बार, दीवार थी वहां, हां दरवाजे में।

एक सुकून भरे रिश्ते की तलाश सभी को होती है ना? आपको भी है ना? पर कहाँ मिलता है वो रिश्ता हर एक को? शब्द चाहिए थे मुझे, प्यार भरे शब्द। कहीं कहीं कुछ शब्द मिले भी, पर अफसोस उनमें अर्थ नहीं था, भाव नहीं था, एहसास भी नहीं था। अब ऐसे शब्दों का क्या करती है?

कभी कभी आपको रौंद कर भी गुजर जाते हैं कुछ लोग, और आप दबे कुचले से उस नुकीली चुभन को सहते चले जाते हैं, सहते चले जाते हैं। तब लगता है जैसे हर लम्हा ढल रही हूं मैं, रात बनकर उतर रही हूं मैं, जिंदगी जी रही हूं या जिंदगी को कुतर रही हूं मैं। हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, हो सके तो मुझे इकट्ठा कर, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं, लफ्ज बनकर पिघल रही हूं मैं।

0: और अब छाया गीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चल, नेचुरल है।
2: इसका सलूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

इस गीत के साथ ही आज का ढलती जाए रात कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब समाप्त होता है। कल प्रातः 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब समाप्त होता है। कल प्रातः 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।